मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

बाद का है। सामईन, आज की नशिस्त से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Matched Up 1-6.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस. देन स्टे ट्यून्ड

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCB की दुनिया से। लिसनर्स, आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर शोबे को तब्दील कर रही है और तालीम भी इससे मुस्तस्ना नहीं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो ऐसे रुझान हैं जो तालीमी निज़ाम को नए अंदाज से तश्कील दे रहे हैं। OBE स्टूडेंट्स के हासिल शुदा रिजल्ट्स और स्किल्स पर जोर देता है, जबकि AI लर्निंग को ज्यादा स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और डेटा ड्रिवन बनाता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये दोनों मिलकर किस तरह तालीम के मुस्तकबिल को बेहतर बना रहे हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में एजुकेशन पर किस तरह असरात डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर शेख बाबर हमीद साहब, जो कि UCP की फैकल्टी FYT के ACT डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं, और आपके पास 11 साल से ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और टीचिंग बैकग्राउंड भी रखते हैं। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स, IoT सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग के डोमेन्स में एक्सपर्टीज रखते हैं और इस वक्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD भी परसू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
1: सर, वक्त जाये किए बगैर अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि OBE यानी आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है और आज की तालीम में इसकी अहमियत क्यों बढ़ रही है।
2: OBE यानी आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक मॉडर्न एजुकेशनल अप्रोच है, जहां फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बल्कि इस पर होता है कि एक स्टूडेंट ने क्या सीखा और क्या परफॉर्म कर सकता है। इस सिस्टम में हर कोर्स के क्लियर और मेजरेबल आउटकम्स डिफाइन किए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: यानी कोर्स के एंड पर स्टूडेंट क्या

0: कर सकता है, ये पहले से डिफाइन होता है। आज के दौर में इसकी अहमियत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडस्ट्री को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस चाहिए। ओबी इंश्योर करता है कि ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल हों, सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, ट्रेडिशनल टीचिंग और ओबीई अप्रोच में बुनियादी फर्क क्या है?
0: ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट जो है वो पैसिवली सुनते हैं। यहाँ सक्सेस को सिलेबस कंप्लीट करने से मेजर किया जाता है। इसके बरक्स ओबी को अगर देखा जाए तो ओबी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यहाँ फोकस लर्निंग आउटकम पर होता है। टीचर का रोल भी चेंज हो जाता है, वो सिर्फ लेक्चरर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर और गाइड बन जाता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ आपको तो ट्रेडिशनल वे में टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर फोकस है, और ओबी में हम इस पर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट क्या सीख रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, स्टूडेंट लर्निंग को सिर्फ सिलेबस कवर करने की बजाय आउटकम्स की बुनियाद पर मैयर करना क्यों जरूरी है?
0: सिर्फ सिलेबस कवर करना लर्निंग की गारंटी नहीं होता। बहुत दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट लेक्चर अटेंड किए होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल तौर पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। आउटकम बेस्ड मेजरमेंट से ये क्लियर होता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझा भी है और उसे अप्लाई भी कर सकता है। ये अप्रोच लर्निंग को मीनिंगफुल और वेरीफाइबल बनाती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, जब हम ओबीई की बात करते हैं तो सीएलओस और पीएलओस का जिक्र भी आता है, तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि सीएलओस यानी कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं और ये कोर्स डिजाइनिंग में क्या किरदार अदा करते हैं?
0: सीएलओ वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो बताते हैं कि स्टूडेंट कोर्स के एंड में क्या अचीव करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल है मशीन लर्निंग की।
1: बिल्कुल।
0: स्टूडेंट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। सीएलओ कोर्स डिजाइन के बेस होते हैं, इनके बगैर ना टीचिंग क्लियर होती है ना असेसमेंट। ये टीचर को डायरेक्शन देते हैं कि क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट को समझ देते हैं कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
1: बिल्कुल। और सर, पीएलओस यानी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स वो क्या होते हैं, हमारे सुनने वालों को उसके बारे में भी बताएं, और पीएलओस और सीएलओस का दरमियान क्या ताल्लुक है ये भी एक्सप्लेन करें।
0: अब सीएलओ के बरक्स अगर मैं पीएलओ की बात करूं तो पीएलओ पूरे डिग्री प्रोग्राम की ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं जबकि सीएलओ स्पेसिफिक कोर्स के आउटकम्स होते हैं। अब अगर इनका रिलेशनशिप निकालना है तो सीएलओ पीएलओ को सपोर्ट करते हैं, यानी हर कोर्स का अपना हिस्सा है जो पूरे प्रोग्राम के गोल को अचीव करने में कोर्स अपना हिस्सा डाल रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, एक अच्छा और मेजरेबल सीएलओ लिखने के लिए किन प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना चाहिए?
0: अच्छा सीएलओ लिखने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। नंबर वन, एक्टिव वर्ब जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेसिस पे होगा। नंबर टू, कंटेंट, और नंबर थ्री, कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो जैसे मशीन लर्निंग की मिसाल बनती है
1: जी,
0: सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम यूजिंग पाइथन ऑन रियल डाटा सेट। अगर इसमें देखा जाए तो सॉल्व मेजरेबल है, रिग्रेशन प्रॉब्लम क्लियर है और पाइथन प्लस डाटा सेट कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है और ये टीचिंग और असेसमेंट को कैसे गाइड करती है।
0: अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखा जाए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो लर्निंग के 6 लेवल डिफाइन करता है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें सबसे पहले रिमेम्बर आता है, सबसे जो बॉटम लेवल है वो रिमेम्बर और टॉप लेवल पर क्रिएट है। तो अगर मैं इसको आपको तरतीब वाइज बता दूं, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट एंड क्रिएट। अब टीचर इस फ्रेमवर्क को यूज करता है ताकि वो सिर्फ बेसिक लेवल यानी याद करने पर ना रहे बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाए।
1: बिल्कुल।
0: असेसमेंट भी इसी के मुताबिक डिजाइन होती है।
1: अच्छा सर, स्टूडेंट्स को सिर्फ याद करने से आगे बढ़ाकर एनालिसिस, एवेल्युएशन और क्रिएशन की तरफ ले जाना क्यों जरूरी है?
0: अच्छा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मेमोराइजेशन से सॉल्व नहीं होते।
1: बिल्कुल।
0: एनालिसिस, एवेल्युएशन और क्रिएशन से स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है।
1: ऐसा ही है।
0: आज के दौर में इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं और ये सिर्फ हायर ऑर्डर थिंकिंग से डेवलप होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये नुकता नजर कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट के सूल के मुताबिक भी है जिसमें लर्निंग, टीचिंग एक्टिविटीज और आउटकम असेसमेंट को आपस में अलाइन किया जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट का, कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट क्या है और इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये क्यों अहमियत रखता है?
0: अच्छा, कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जिसमें सीएलओ, टीचिंग एक्टिविटीज, असेसमेंट सब एक दूसरे के साथ अलाइंड हों।
1: बिल्कुल।
0: अगर सीएलओ कहता है कि सॉल्व प्रॉब्लम तो टीचिंग भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होनी चाहिए और असेसमेंट भी।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, अगर लर्निंग आउटकम्स, टीचिंग एक्टिविटीज और असेसमेंट्स अलाइन ना हों तो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं?
0: अच्छा, मिस अलाइनमेंट से लर्निंग इनफेक्टिव हो जाती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और सिर्फ सुपरफिशियल लर्निंग करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट एग्जाम पास कर लेता है लेकिन रियल स्किल्स डेवलप नहीं होती, जो इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए हमें बैकवर्ड डिजाइन पे फोकस करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे OBE और AI इंटीग्रेशन की। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख बाबर साहब, और इन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि OBE क्या होता है और ट्रेडिशनल टीचिंग और OBE में क्या बुनियादी फर्क है, और CLOs और PLOs क्या होते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है, और CLO को मयूरेबल क्यों होना चाहिए, इस बारे में इन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया। और साथ साथ इन्होंने हमें बताया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है और टीचिंग असेसमेंट में ये किस तरह अपना रोल प्ले करती है। और अब हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट क्या होती है और ये किस तरह हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती है। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जिक्र किया बैकवर्ड डिजाइन का, हमारे सुनने वालों को बताएं कि बैकवर्ड डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है और कोर्स प्लानिंग में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है।
2: अच्छा, बैकवर्ड डिजाइन एक पावरफुल और सिस्टमेटिक अप्रोच है जो टीचिंग को गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड और इफेक्टिव बनाता है। इसका बेसिक आइडिया है कि एंड को पहले डिफाइन करो, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता प्लान करो। यानी टीचर पहले से डिसाइड करता है कि कोर्स के एंड पर स्टूडेंट को क्या आना चाहिए, उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि इस गोल तक स्टूडेंट को कैसे लेकर जाना है। इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले हम CLO को डिफाइन करेंगे, फिर असेसमेंट को डिजाइन करेंगे और फिर टीचिंग प्लान करेंगे। इससे टीचिंग जो है वो फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड हो जाती है।
1: सर, एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करता है?
2: अच्छा, ये जो एक्टिव लर्निंग है वो मॉडर्न टीचिंग अप्रोच है जहाँ स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर सुनने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनता है। इस अप्रोच का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लर्निंग तभी मीनिंगफुल होती है जब स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो, सोचे, डिस्कस करे, अप्लाई करे और रिफ्लेक्ट करे।
1: अच्छा सर, एक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लिप्ड क्लासरूम और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जैसी अप्रोचेस का नाम जरूर आता है, तो सर ये फ्लिप्ड क्लासरूम और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की जो अप्रोच है ये किस तरह बेहतर नतीजे दे सकती है?
2: पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि है क्या ये फ्लिप क्लासरूम और जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, वो दोनों मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेज हैं जो ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड लर्निंग से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फ्लिप क्लासरूम में थ्योरी घर पर और प्रैक्टिस क्लास में होती है, जबकि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों अप्रोचेज स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती हैं और रियल लर्निंग इंश्योर करती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फ्लिप क्लासरूम में जो है घर पर वीडियो लेक्चर देखे जाते हैं और रीडिंग मटेरियल जो है वो बच्चे घर से स्टडी करके आते हैं, और जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो क्लासरूम में हम उसको लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट को रियल डाटा सेट, जैसे मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो स्टूडेंट को क्लासरूम में एक रियल डाटा सेट दे दिया जाएगा और कहा जाता है कि बेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल आइडेंटिफाई करें, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, वो उसके फिर खुद से बच्चे उसके एवेल्युएशन मैट्रिक्स को जो एवेल्युएट कर रहे होते हैं।
1: अच्छा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ट्रेडिशनल तालीम के निजाम को किस तरह तब्दील कर रही है?
2: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आ रही है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक ऐसी फोर्स है जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के पूरे फ्रेमवर्क को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक स्टूडेंट को रिग्रेशन मुश्किल लग रही है तो AI उसके लिए सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जनरेट कर सकती है। और टीचर्स की अगर बात की जाए तो उससे क्या होता है कि टीचर जो है वो अपना टाइम सेव कर रहे हैं और वो जो सेव टाइम है वो बच्चों पर ज्यादा स्पेंड कर सकता है बजाय कि अपने वो कोर्स के कंटेंट को तैयार करे।
1: बिल्कुल सर, टीचर्स और स्टूडेंट्स AI टूल से जिम्मेदाराना और मुआसर फायदा कैसे उठा सकते हैं?
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के दौर में तालीम का एक पावरफुल हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका सही और जिम्मेदाराना इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर AI को सिर्फ शॉर्टकट या चीटिंग के लिए यूज किया जाए तो ये लर्निंग को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लर्निंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव और इफेक्टिव बना सकती है। सिंपल अल्फाज में AI एक टूल है। इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों AI से तभी मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं जब इसे लर्निंग टूल के तौर पर यूज किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को मेंटेन रखा जाए और एथिकल यूज को फॉलो किया जाए।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग की स्किल जो है वो आज के स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी होती जा रही है?
2: आज के दौर में अगर देखा जाए तो इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि AI सिस्टम को ऐसा क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल इनपुट दिया जाए जिससे वो रेलेवेंट, एक्यूरेट और यूजफुल आउटपुट जनरेट कर सके।
1: बिल्कुल।
2: सिंपल फ्राज में जितना बेहतर तरीके से सवाल पूछा जाएगा उतना ही बेहतर जवाब मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: AI खुद से कॉन्टेक्स्ट गेस नहीं करता, वो यूजर के दिए हुए प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं मिसाल दूं कि मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करो तो जवाब भी जनरल सा होगा, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक हो, मसलन मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक को सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो और ये बिगिनर्स के लिए हो, तो वो जवाब ज्यादा रेलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड होगा।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो आजकल के जमाने में अभी देखा जा रहा है वो ये कि स्टूडेंट जो है वो सारी के सारी असाइनमेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ChatGPT से या किसी भी AI टूल से, तो आपके ख्याल में कैसे डिजाइन करनी चाहिए असाइनमेंट्स के उससे लर्निंग को रिफ्लेक्ट किया जा सके?
2: नो डाउट इस AI के दौर में जो असाइनमेंट डिजाइन करना एक चैलेंज बन चुका है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि स्टूडेंट आसानी से AI टूल से रेडीमेड आंसर हासिल कर लेते हैं, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि असाइनमेंट ऐसी डिजाइन की जाएं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस ना करें बल्कि स्टूडेंट की रियल अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और स्किल को मेजर करें। अगर देखा जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास मेथड है, जैसे हम रियल वर्ल्ड और कस्टम डेटा सेट यूज कर लें। मैं फिर मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड करें, वाइवा और ओरल असेसमेंट लें, लाइव डेमोंस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन लें, और एक सबसे अहम जो चीज है जिसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करें कि असाइनमेंट 1, 2, 3 और 4 आपस में कनेक्टेड हो, तो इससे हम जो है वो काफी बेहतर असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट में क्या फर्क है? पहले तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि दोनों होती क्या है और फिर एक्सप्लेन करें कि इन दोनों में फर्क क्या है।
2: अच्छा, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट जो है वो दोनों का अपना रोल है और दोनों का बैलेंस एक इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब पहले मैं बता दूं फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, यानी जब स्टूडेंट अभी सीख रहा होता है।
1: बिल्कुल।
2: इसका मकसद होता है कि फीडबैक देना और लर्निंग को इम्प्रूव करना।
1: बिल्कुल।
2: अब इसमें शामिल क्या है, इसमें वीकली क्विजेज, असाइनमेंट, क्लास पार्टिसिपेशन, लैब वर्क, शॉर्ट प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ शामिल है। और जो हमारी सबमिटिव असेसमेंट है वो जब हमारी लर्निंग के एंड पर हम उसको बच्चे को असेस कर रहे हैं कि इसमें बच्चे ने कितना सीख लिया।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, आपके ख्याल में असेसमेंट का असल मकसद ग्रेडिंग होता है या लर्निंग इम्प्रूव करना है?
2: हाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज कि असेसमेंट का असल मकसद जो है सिर्फ ग्रेडिंग नहीं बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना है। ग्रेड सिर्फ परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट देती है, लेकिन असल वैल्यू फीडबैक में होती है जो बताता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है और कैसे बेहतर हो सकता है। इफेक्टिव असेसमेंट सिस्टम में फोकस लर्निंग प्रोसेस पर होता है जहाँ स्टूडेंट को कंटिन्यूस गाइडेंस मिलती है, ना कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट। OBE के परस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊँ तो ये भी एक असेसमेंट का रोल ये होता है कि लर्निंग आउटकम अचीव हुए या नहीं, और अगर गैप्स हैं तो उन्हें एड्रेस कैसे किया जाए, और अगर असेसमेंट सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड हो जाए तो स्टूडेंट जो है वो बेसिकली वो रटा लर्निंग की तरफ आ जाएंगे, और जबकि फीडबैक बेस्ड सिस्टम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करता है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग इम्प्रूव होती है और सबमिटिव असेसमेंट जो है फाइनल अचीवमेंट को मेजर करती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, CLO अटेनमेंट क्या होता है और इसे मेजर करना क्यों जरूरी है?
2: CLO अटेनमेंट एक मेजर है जो ये बताता है कि कोर्स के लर्निंग आउटकम कितने स्टूडेंट ने सक्सेसफुली अचीव किए हैं। इसे मेजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टीचिंग इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट लर्निंग का क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करता है। इस डाटा की मदद से वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कोर्स टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट को इम्प्रूव किया जाता है जो ओवरऑल एकेडमिक क्वालिटी को अश्योर करता है।
1: सर, अगर किसी कोर्स का अटेनमेंट बेंचमार्क से कम आए तो इंस्टीट्यूशन को क्या कदम उठाना चाहिए?
2: ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर किसी कोर्स के CLO अटेनमेंट बेंचमार्क से कम आ जाए तो इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले जो है वो असेसमेंट डाटा का डिटेल एनालिसिस करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम की असल वजह समझ आ सके। उसके बाद वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एक्टिविटीज और असेसमेंट के डिजाइन को इम्प्रूव किया जाए। ये चेंजेस जो है वो नेक्स्ट एकेडमिक साइकिल में इम्प्लीमेंट की जाए और दोबारा मेजरमेंट की जाए। इस तरह कंटीन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इंश्योर हो जाएगी।
1: सर, अभी आपने कंटीन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिसे हम CQIB कहते हैं इसका जिक्र किया, तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि CQI असल में होता क्या है और ये एजुकेशनल एक्सीलेंस में क्या किरदार अदा करता है।
2: अच्छा मैम, जो कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे आपने भी बताया कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CQI कहते हैं, ये एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हर सेमेस्टर या साइकिल के बाद लर्निंग आउटकम्स और टीचिंग इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट किया जाता है। इस प्रोसेस में हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले असेस, फिर उसके बाद एनालाइज, फिर इम्प्रूव, फिर इम्प्लीमेंट।
1: बिल्कुल,
2: इस साइकिल को हम फॉलो कर रहे हैं। CQI इंस्टीट्यूशन को मदद देता है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट्स और कोर्स को रेगुलरली अपडेट करें ताकि लर्निंग क्वालिटी बेहतर हो और सस्टेनेबल एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव की जाए। और इस सिलसिले में हमारी जो है वो मदद LMS से हमें काफी मदद मिलती है।
1: सर, अभी आपने LMS का जिक्र किया, हमारे सुनने वालों को बताएं कि LMS क्या है और ये लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव करता है।
2: अच्छा, LMS जिसे हम फुल फॉर्म में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ये लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन करता है। इसके जरिए टीचर्स कोर्स मटेरियल, असाइनमेंट्स, क्विजेज और फीडबैक एक प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: स्टूडेंट्स कभी भी और कहीं से भी जो कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं, जिससे लर्निंग फ्लेक्सिबल और सेल्फ पेस्ड हो जाती है। LMS प्रोग्रेस ट्रैकिंग और टाइमली लर्निंग जर्नी को सपोर्ट करता है। वो स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ गाइड करता है। इस तरह टीचर का फोकस इंफॉर्मेशन डिलीवरी से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट और मीनिंगफुल लर्निंग पर हो जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जो कि काफी बेनिफिशियल है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का हमारे साथ।

0: मौसीकी के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे OBE एंड AI इंटीग्रेशन के बारे में, और हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है शेख बाबर साहब, और इन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि OBE बेस्ड एजुकेशन क्या होती है और ट्रेडिशनल और OBE बेस्ड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, और CLOs और PLOs क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है या इनमें लिंक क्या बनता है, और मेजरेबल CLO लिखने के लिए किन प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना चाहिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात की, और फिर हमने कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया, साथ साथ बैकवर्ड डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी आया, एक्टिव लर्निंग के ऊपर बात की, और साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्टिव लर्निंग के लिए फ्लिप्ड क्लासरूम और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की अप्रोचेस किस तरह हेल्प आउट कर रही होती हैं। और सर ने हमें बड़ी तफसील से बताया कि कंटीन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी CQI क्या होता है और एजुकेशनल एक्सीलेंस में क्या किरदार अदा करता है, और CQI की इम्प्रूवमेंट में LMS किस तरह हेल्प आउट करता है। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, इनमें क्या फर्क है?
2: अच्छा, ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जो हैं वो ऑनलाइन और फेस टू फेस लर्निंग का कॉम्बिनेशन होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो मॉडर्न लर्निंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनाते हैं। इन मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कहीं से भी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एंगेजमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं क्योंकि इंटरेक्टिव एक्टिविटीज और इन क्लास डिस्कशन दोनों कंबाइन होते हैं। इसके अलावा सेल्फ पेस्ड लर्निंग की फैसिलिटी स्टूडेंट को अपनी स्पीड के मुताबिक कॉन्सेप्ट समझने का मौका देती है।
1: अच्छा सर, आज के ग्रेजुएट्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए?
2: आज के जो ग्रेजुएट हैं वो गैजेटरी तो बहुत हैं, उनको गैजेट्स का बहुत पता है, लेकिन अगर हम देखें तो फ्यूचर रेडी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें जो होनी चाहिए, दैट आर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, AI लिटरेसी, कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, ये वो स्किल्स हैं जो कि उनको फ्यूचर में अच्छा कैरियर परसू करने में मदद दे सकती हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे शो का टाइम लिमिटेड है सर, OBE टेक्नोलॉजी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से आप स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: अच्छा, मेरा पैगाम ये है कि लर्निंग को सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड ना करें। OBE क्लियर डायरेक्शन देता है, टेक्नोलॉजी स्पीड देती है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो सक्सेस इंश्योर करती है।
1: बिल्कुल।
2: स्टूडेंट्स को स्किल पर फोकस करना चाहिए और टीचर्स को मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहिए।
1: लिसनर्स, आज के डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि OBE और AI का कॉम्बिनेशन तालीमी निजाम को मॉडर्न ही नहीं बना रहा, बल्कि उसे ज्यादा मौसर, प्रैक्टिकल और मुस्तकबिल से हम आहंग भी कर रहा है। आज की गुफ्तगू से ये वाजह होता है कि जब टीचिंग का फोकस सिर्फ सिलेबस पर नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स पर हो, और साथ ही AI जैसे एडवांस टूल्स शामिल हों, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग क्वालिटी बेहतरी की नई मंजिलों तक पहुंच सकती है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: लिसन, लर्न, डिस्कवर With radio station FM 92.6 UCP के दुनिया।
6: मैं काम करके थक जाती हूँ।
7: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
8: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें। इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Ladies and gentlemen, we are live now. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर रابطہ कीजिए।
1: Are you tired of feeling

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم نے بات کی لٹریچر پہ، ہم نے بات کی ڈیبیٹس پہ۔ حارث، آپ بات کر رہے تھے آپ نے ہیومر ڈیبیٹس کی، جو آپ نے یو ای ٹی میں اوور آل بیسٹ اسپیکر کا اوارڈ بھی جیتا، تو ہیومر ڈیبیٹس کا آپ کے اندر کیسے آیا کہ ایک سیریس ڈیکلمیشن کو چھوڑ کے ہیومر ڈیکلمیشن کرنا، ہیومر ڈیبیٹ کرنا؟
2: میں نے کبھی بھی نا ویسے ڈیکلمیشنز میں سیریس ڈیکلمیشنز نہیں کی، اسپیچ وغیرہ میں کرتا تھا، لیکن جو ڈیکلمیشنز والی چیز ہے اس کی طرف میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ میرا جو ایک تھاٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، 7-8 دن لگتے ہیں لکھنا اور ڈلیوری پہ کام کرنا۔ کیونکہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میں اگر وہ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ ہیومرس ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہو، جب آپ مزاحیہ تقریر کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کے پاس نا مارجن آف ایرر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب آپ ایک کر رہے ہو، آپ بھول بھی گئے ہو، تو آپ کہیں سے اور اپنا جو ہے نا کوئی اور جوک کا پیچھے لے آتے ہو کہانی کو تھوڑا سا چینج کر کے، تو وہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سیریس ایک اس میں ہوتے نا، تو وہ ایک ٹرین ہوتی ہے، اس میں اگر ایک بھی آپ کا اسٹیشن مس ہو جائے نا، تو آپ اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو میں نے اپنی آسانی کے لیے ہی شروع کی تھی یہ ہیومرس ڈیکلمیشنز، اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو سیریس ڈیکلمیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے ہیومر کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ الٹرنیٹیو اس پہ بن رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اردو سیریس ہے تو اس کو انگلش ہیومرس کا ٹیم میٹ چاہیے، اور اگر انگلش سیریس ہے تو اسے اردو ہیومرس کا ٹیم میٹ چاہیے۔ تو صرف اس وجہ سے مجھے تھا کہ چلو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ٹیم بھی سپورٹ ہو جائے گی کہ ایک کو بھی ریپرزینٹ کر لیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ میں سیریس تو کر نہیں رہا تھا۔ پھر جہاں تک بات تھی پارلیمنٹری کے اوپر ڈیکلمیشنز کو فروغ دینے کی، وہ میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ تھا کہ جو پارلیمنٹری ہے اس میں تو بہت دن لگ جاتے ہیں، آپ کا ایک ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ 3-4 دن پہ جا رہا ہوتا ہے،
1: اور مس مینجمنٹ
2: بہت ہوتی ہے، ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، کہیں 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گیا، کہیں 2 گھنٹے ڈیلے ہو گئے، پھر کھا بھی آپ اپنے باہر سے رہے ہیں، اور بڑی اس میں ہائیجین بھی اور کمپرومائز ہوتی ہے، اور ہیلتھ بھی بڑی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ ہوتا بھی ویکینڈ پہ ہے، تو 5 دن آپ یونیورسٹی جائیں، 6 دن اور اس کے بعد آپ 2 دن کسی اور جگہ پہ جا کے بول رہے ہو، تو اتنی طاقت بچتی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ڈیکلمیشنز کرنی ہے تو اس میں ہیومر کرنی ہے، اور وہ ہفتے میں، 10 ہفتے میں، پتہ نہیں جتنا بھی ٹائم لگ جائے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں فلاں دن ہے، اس دن جائیں گے، یہ تقریر ہے، اس پہ کرنی ہے، تو آپ کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک وہ بات ہے پارلیمنٹری کی، وہ ایک مشکل چیز ہے، بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، تو یہ وجہ تھی میری۔ اور جہاں تک ہیومر ہے تو میرے خیال سے وہ ہماری اب میراث بھی ہے کنگ ایڈورڈ والوں کی، کہ ہمارے پاس ڈاکٹر یونس بٹ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہم سب امید سے ہیں، 50-50 اور اس طرح کے کافی کہتے ہیں ڈرامے لکھے، افراتفری بھی ہے ان کا۔ تو اس کے علاوہ باقی کیمکولینز میں انور سجاد جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت سیریس لکھا، پی ٹی وی کے لیے لکھا، ہیومر بھی کیا، ایکٹنگ بھی کی، تو میراث تو ہماری ایگزسٹ کرتی ہے، تو ہم نے تو اس کو بس ایکسیپٹ کرنا تھا کہ کس طرف چل پڑے۔
1: کتنا مشکل ہوتا ہے ہیومر کانٹینٹ لکھنا؟
2: میرے مطابق اس وقت سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا لکھنا نہیں ہے، لکھ میں بہت کچھ لیتا ہوں، مسئلہ ہے بول پانا۔ آج کل جو معاشرہ ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ پہلے اگر آپ دیکھیں، آج سے 15-20 سال پہلے نا، ہم بہت زیادہ پنچ ڈاؤن کرتے تھے، پنچ اپ اور پنچ ڈاؤن کا تو آپ کو اندازہ ہو گئی کہ جو مثال کے طور پہ صاحب مسند ہے ان پہ بات کر لیں تو وہ پنچ اپ کی بات ہے کہ پنچ ڈاؤن کی بات ہے، اور جہاں پہ آپ غربا مساکین اور ڈیگریڈڈ لوگوں پہ بات کریں تو وہ پنچ ڈاؤن والی بات ہے، اور جہاں دوسرے لوگ ہیں تو وہاں پہ پھر وہ اس پہ آ گیا کہ جی اندھوں کا مذاق، لولوں کا مذاق، گونگوں کا مذاق، اور یہ وہ، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ تو یہ چیزیں 15-20 سال پہلے چلتی تھیں، اب تو نہیں چلتی۔ لکھنے کو تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں لکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ بولوں گا تو کینسل ہی ہو جائیں گے اور کہاں جائیں گے۔ تو اب جو ہے میرے خیال سے ہیومر کر پانا ہی بہت مشکل ہے کمل ہے، کیونکہ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پاس تمام دنیا کی ایکسیس ہے، اس کو پتہ ہے ہیومر کیسے ہوتا تھا، کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہوگا۔ سیریس چیز جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ محمد بن قاسم بھی آئے گا، اس میں فلسطین کی بات بھی آ جائے گی، اس میں کشمیر کی بات بھی آ جائے گی، اور اس کے ارد گرد تقریر گھومے گی اور وہ چلا جائے گا بندہ۔ ہیومر کرنا ہے آپ نے ہر جگہ جا کے، نیا ہیومر کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے یو سی پی کے لیے تقریر لکھنی ہے وہ میں الگ تقریر لکھوں گا، لیکن اگر میں نے وہی تقریر کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے لکھنی ہے وہ بالکل الگ ہوگی۔ سیریس جو ہے وہ سب کا ایک ہی دماغ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہیومر کو پک کرنا، ہیومر کو سمجھنا، یہ ہر انسان کا ڈفرینٹ اپنی پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ ایون کافی ایسے جوکس تھے جو میں نے کریک کیے اور میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اور وہ مطلب میرے مطابق تھا کہ یہ 50-50 مارکس والا جوک ہے، اس پہ آدھی عوام ہنس سکتی ہے، اس پہ بہت زیادہ لوگ ہنسے، اور وہ میں نے بعد میں جا کے دیکھا تو آڈینس میں سے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن لی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے تو میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومر ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ کوڈڈ اور انکرپٹیڈ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں۔ تو آج کل کے دور میں لکھنا تو آسان ہے لیکن اس کی تشہیر مشکل ہے،
1: بہت زیادہ سینسرشپ ہے۔
2: सेंसरशिप से ज्यादा हम वैसे ही डरे हुए लोग हैं, हमें वैसे ही खौफ आता है किस पे बात करें किस पे बात ना करें, लिखते हुए भी डर लग रहा होता है यार ये बंदा माइंड ना कर जाए, क्योंकि आजकल वॉक कह लें या जो भी कह लें सेंसिटिविटी कह लें मुआशरे के लिए एवोल्यूशन का तो पार्ट है। एवोल्यूशन जब हो रहा होता है ना तब हम डिसाइड नहीं कर सकते ये फॉर द गुड है या फिर बैड है, जब वो हो जाएगा जब वो गुजर जाएगा फिर उसके 5-10 साल बाद बैठ के हम ये फैसला कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ अच्छी थी या नहीं। क्योंकि अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तान में जो कॉमेडी थी जो ह्यूमर था वो टीवी के प्रोग्राम में एक पैरेडी आर्टिस्ट को बिठा के पैरेडी करवाना था, वो आपको मीर अली की शक्ल में खबरनाक में भी नजर आता था और उसके अलावा बनाना न्यूज नेटवर्क और फला फला फला इन सब नेटवर्क ने यही बनाया हुआ था। लेकिन विद टाइम अब आपने देखा कि 2-3 उनके शो के दौरान भी गेस्ट नाराज हुए कि आपने ये क्या गेस्ट बना के बिठा दिया हमारे साथ डमी और ये वो, तो उससे पता लगा कि लोग सेंसिटिव हैं और वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर अब आपका ह्यूमर आपका जो स्टाइल ऑफ कॉमेडी रह गया है टीवी के ऊपर वो यही है कि अब वो एक गेस्ट को बिठाते हैं और उनकी पर्सनल जिंदगी पे बातें करते हैं, और वो पहले तो बहुत मुश्किल होता था रेयर होता था कि किसी की पर्सनल जिंदगी पे कोई बात करे, अब वो उनकी पर्सनल जिंदगी क्या उनके इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे जो लोगों ने जाके कमेंट्स किए उसके ऊपर जाके वो बात करें और वही उनका शो है। मतलब ये कि अब क्रिएटिवनेस कम हो गई है, क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, अब हम गिनी चुनी बातों पे रह गए हैं कि हाँ पता है इनसे पहले पूछ लेंगे कि ये जो है आजकल कर क्या रहे हैं, इनकी फिल्में चल क्यों नहीं रही, इनके गाने क्यों नहीं बन रहे, चलो ठीक है ये हो गया, अब आप इन लोगों को मशवरे दे दें थोड़ी सी जो है ना एक दूसरे के खिलाफ बातें कर लें। तो अब इस वक्त जो है ना हमारा सारा ध्यान वो कॉमेडी से निकल चुका है, अब ह्यूमर के आपके पास शोज नहीं है, पहले इंफोटेनमेंट के नाम पे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाती थी इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इंसान की जिंदगी की, वो फनी भी होती है काफी दफा वो फनी नहीं होती है। अब टीवी पे एक बड़ा स्ट्राइकिंग चैनल है उसका बड़ा अपना शो है तो उसपे क्रिकेट की बात ही हो रही होती है तो उसके दौरान वो दुनिया के सारे क्रिकेटर्स की पर्सनल जिंदगी पे बात करते हैं, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, तो वो उनका अपना स्टाइल है लोग उस पर हंस पड़ते हैं क्योंकि अब हमने बना ही ऐसा लिया है कि इजी टारगेट पकड़ो और सिर्फ उन्हें बात करो। अगर पहले दुनिया में बात होती थी कि फला बंदा मोटा है और उसके ऊपर उसने 15 जुगतें लिख दी थी इन स्टेज आर्टिस्ट ने तो हम उस पर हंस पड़ते थे क्योंकि हम मोटे नहीं थे, अब मोटे हुए तो अब काफी दफा ऐसा होता है कि उठते अगर 10 किलो किसी का वजन बढ़ जाए तो उसको बड़ा अजीब फील होता था, वो हंस भी पड़ता है कि यार ये क्या मैं लोगों को बातें करता था मेरे साथ हो गया, तो हम बड़े ना लाइटली लेते थे। अब हमने क्या किया, अब हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अब हम किस पे बात करेंगे, हम इजी टारगेट्स पकड़ेंगे, वो बाबर आजम भी हो सकता है, वो डेक्लेमेशन का जो एक प्रधान बन के बैठा हुआ स्टेज पे सदर है वो भी हो सकता है, इजी टारगेट्स है।
1: ह्यूमर में तो ये कल्चर बहुत है कि आप आते हो और आप आके सदर और उनको टारगेट बहुत ज्यादा करते हो,
2: वो बीफ वाली चीज आ जाती है ना रोस्टिंग में आ जाता है थोड़ा, क्योंकि आप पहला जो किसी तरह का रखते हो कि हाँ जाऊंगा जाके उनके सदर पे बात कर दूंगा तो जो वहाँ की ऑडियंस है उन्होंने होगा कि यार ये तो बड़ा पापा बंदा है ये तो किसी को भी बात कर देता है, तो बस ये इस साइकी में होता है। उसके अलावा अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मेरे जहन में ये होता है कि मैंने अगर जोक्स लिखने हैं तो मैं किन चीजों पे लिखूंगा, एक तो मैं उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर लिखूंगा वो कैसे बनी हुई है, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर यूनिवर्सिटी को आप मैदान ही बड़ा खुला छोड़ा हुआ है लेकिन खेलने ही नहीं देते तो क्या साइकी क्या बनती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आप उन्हें फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे चाहे वो एसी की शक्ल में हो ठंडे पानी की शक्ल में हो तो मैं इस पे जोक जरूर लिखूंगा, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है। दूसरा मेरे जहन में होता है कि मैं लिखूंगा उनकी डिबेटिंग सोसाइटी के ऊपर, उनकी डिबेटिंग सोसाइटी कैसी चल रही है उनके क्या इश्यूज हैं। तीसरा मेरे जहन में होता है कि जो इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू है मैं उसके ऊपर जोक लिखूंगा, वो चाहे जोक हो चाहे लोगों को एक इशारा हो कि ये भी एक मसला चल रहा है।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैंने अपनी सीरियस तकरीर नहीं थी मेरी ह्यूमरस तकरीर थी, मैंने उसके अंदर भी लोगों को निशान दिलाया कि आजकल जो मुसलमान है उसका तो बड़ा मियार बड़ा आसान है कि एक डंडा पकड़े और सड़क पे निकल जाए वो मुसलमान हो जाता है, तो इसके ऊपर लोगों का बड़ा रिएक्शन था कि आपने ह्यूमरस तकरीर में कैसे बात कर दी, ये तो बड़ी सीरियस बात है, लोग तो बड़े स्टंट थे। तो मैंने कहा मेरा मकसद ये तो नहीं है सिर्फ कि मैंने लोगों को हंसाना है।
1: अच्छा एक और एक दो बातें और, कि आजकल डिबेट्स में वल्गैरिटी भी आ जाती है, डिबेट्स में नहीं अगर हम कॉमेडी की ओवरऑल बात करें, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि जो मीम्स हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि हम उसको एज ए ह्यूमर डिबेट में कंटेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं।
2: देखिए अब वही बात आ जाती है कि जब आप वल्गैरिटी कह रहे हैं तो वो हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है, मिसाल के तौर पे अगर वो तकरीर में कर जाता हूँ और वो लोग उस पर इतना नहीं बोलते तो फिर वो उस टाइम पे वल्गर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब लोग जो है वो इंस्टाग्राम के मीम्स देख ही रहे हैं, जब उन सबको पता है कि ये वाला ह्यूमर चल रहा है तो वो चल रहा है। लेकिन इशू तब आता है जब प्लेजरिज्म आ जाता है, जब कॉपी पेस्टिंग आ जाती है, आपने यहाँ से उठा के वहाँ यूज कर लिया। अब एक इंसान है जिसने खुद इंस्टाग्राम से उठाया हुआ एक जोक था और वो दूसरा भी उठा के ले आया, दोनों उठा के ले आया, तो आपको पता लग जाता है कि इस मुकाबले का या इस इदारे का क्या मियार है। होनी चाहिए नोवेल्टी, होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, होनी चाहिए बात। अगर आप एक बात करने आए हैं घर से उठ के आए हैं और आप चाहते हैं सब लोग सुने, उसमें कुछ ना कुछ मवाद होना चाहिए कि अगर आप उठ के आए तो हाँ कुछ डिफरेंट है। और पाकिस्तान और इंडिया और ये वो मुल्क हैं जिन्होंने अपने मसाइल के ऊपर खुद ह्यूमर करके खुद को हंसा के ठंडा किया है, अपने दुखों के ऊपर जो है ना मरहम लगाया है, और वो उनका बात बदलने का तरीका था, चाहे वो किसी मुर्दे के बर्फ पे लेटे होने पर जुगत थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को, अपने दिल को उस चीज से दूर करने की कोशिश थी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि ये तो बड़ी बेहुर्मती कर रहे हैं। बेहुर्मती मेरे मुताबिक तब होती है जब आप उस इंसान की जो है ना पर्सनल जिंदगी को ना ब्रीच करें। अगर आप उस यूनिवर्सिटी को ब्रीच कर रहे हैं कि जी उन लोगों ने जो है अपने बच्चों को एसी नहीं फराहम की है, या उन इदारे ने अपने मुल्क में बड़ी तोहीन की हुई है और बड़ी करप्शन की हुई है, तो ये मेरा नहीं ख्याल किसी की पर्सनल लाइफ ब्रीच हो रही है। ये ज्यादा लोगों को आप फायदा ही पहुंचा रहे हैं अगर आप अवेयरनेस भी शुरू दे देते हैं।
1: ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमारा जो ह्यूमर का जो एक सर्कल है, अगर हम यहाँ पे डिबेट्स पे ना बात करें, शोज पे बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, तो उनको उस नज़र से देखा भी नहीं जाता, मतलब इज्जत से तो देखा ही नहीं जाता। हमारे पास एक एग्जांपल भी है जिनका, ये उन्होंने वो जनाजा नहीं उठाने दिया था। तो आपको नहीं लगता कि ये भी बहुत ज्यादती है जिसकी वजह से हमारा जो कॉमेडी है वो नीचे गई है?
2: असल में मसला ये भी आ जाता है कि आर्टिस्ट भी तो देखे ना कि वो क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं एक ह्यूमरिस्ट हूँ और मैंने सारी जिंदगी ह्यूमर ही लिखा है, तो आपके पास एग्जांपल मिलती है मुश्ताक अहमद यूसुफी की, जिनका बड़ा बड़ा वाक्य है कि जी वो एक बाग में बैठे थे और टहलते हुए उन्हें खातून नजर आई, उन्होंने कहा कि मैं लिखता हूँ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे अपनी कोई तहरीर दें, उन्होंने उन्हें अपनी किताब पकड़ा दी। वो खातून अगले दिन आई तो उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था और उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी उन्हें किताब पकड़ाई और वो जाने लगी, तो उन्होंने कहा कैसा क्या हुआ, तो उन्होंने मुड़ के बस ये कहा कि आपकी शक्ल से देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी बातें सोचते होंगे। तो बात यह है कि हमारे राइटर भी और जो है जो आर्टिस्ट हैं या कोई फनकार हैं या स्टेज ड्रामों में काम करने वाले जो लोग हैं जिनकी तरफ आपका इशारा था, वो लोग परफॉर्मर हैं, वो एंटरटेनर हैं, उन्हें जो स्क्रिप्ट कराई जाती है, उन्हें जो कहा जाता है वो कर देते हैं। हम उन लोगों को जब फनकार का वो दर्जा देते हैं ना कि बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत उनका ये रुतबा है, तो उसको देख के लोगों में जेलिसी आती है। अब एक ऐसा इंसान जो उनकी सोसाइटी का हेड है, उसने सारी जिंदगी उसी सोसाइटी में गुजारी है, उसके बाप के पास ज्यादा पैसा था तो उनके चार घर थे, तो वो उस सोसाइटी के हेड लग गए। अब उन्हें दुख होता है कि यार एक बंदा है जिसको आता जाता भी कुछ नहीं है, वो जाता है उसको स्क्रिप्ट मिलती है, वो जाता है उन्हीं के कपड़े मिलते हैं, उन्हीं का खाना मिलता है, वो वहां जाके कुछ भी बोलता है, उसको जो है पजीराई मिलती है और वो बातें भी बड़ी गलीज करता है, और वो बातें गलीज इस तरह करता है कि वो बातें ये नहीं कर पा रहे, करना ये चाह रहे हैं कि इनको आती हैं ये सारी जुगतें, ये जो हम जो सारे मौजूद लोग बैठे हैं, हमें मौका मिले हम इनसे ज्यादा जुगतें कर सकते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे जोक्स लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने खुद एक वो बनाया हुआ है, बाउंड्रीज बनाई हुई है, तो वो कहते हैं कि यार अब हम रिस्पेक्टेड लोग हैं, हम इनके सामने क्यों आए। क्योंकि हमारे मुआशरे को जो तश्कील दिया गया था ना, वो पैसे और इज्जत की बुनियाद पर दिया गया था, हायरार्कीज हमारी नहीं दो बुनियादों पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जब लोगों के पास उसके फनकार जितना पैसा नहीं है, तो वो उसका बहाना ढूंढते हैं कि जी ये तो शराब भी पीता है, उसने तो कब कहा था कि मैं बड़ा हाजी हूँ, उसने तो कहा था मैं गाता अच्छा हूँ, तो हमने तो उसको सिर्फ गाने पे जज करना था, हम देखते हैं वो तो अपनी बीवी को मारता है, तो ये तो उसकी बीवी ने जाके शिकायत करनी है ना पुलिस को। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जितने हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी अपनी जिंदगी में क्या उस आर्ट की कदर है और वो कितना आर्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम उस चीज को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि वल्गैरिटी भी बड़ी एक सब्जेक्टिव चीज है और हर इंसान का जो एक लेवल है वो डिफरेंट है। मेरे लिए कोई चीज वल्गर हो सकती है, हो सकता है उस आर्टिस्ट को वो ना लगती हो, तो इसका हल ये है कि मैं उस आर्टिस्ट को पढ़ना छोड़ दूं।
1: अभी तो और भी बहुत सी बातें होनी थी लेकिन वक्त की कमी के बाइस हमें अपना प्रोग्राम खत्म करना है। थैंक यू सो मच हारिस, आपने हमें वक्त दिया, अपने एक मसरूफ रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला। उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

पहले पहल कहा जाता था, जिसने बाप के जूते नहीं खाए उसकी किस्मत नहीं चमकी। यह बात इस कदर दुरुस्त समझी जाती थी कि हर बाप इस फर्ज को लाजमी पूरा करता था ताकि औलाद की किस्मत जरूर चमके। मगर जूं जूं माशरे में तब्दीली रूनमा हुई, बच्चों को जूते खाना पसंद नहीं रहा। खामोश रहने वाले बच्चे अपनी शख्सियत में किस कदर पेचीदगियां समेट पाए, लफ्जों में बयां से परे है। यह कहानी अहमर की है। वो तन्हाई पसंद बच्चा था, उसका दिल हमेशा बाप की तरफ से डरा रहता था। सईद साहब के बच्चे उनसे बहुत डरते थे, यहां तक कि 3 शादीशुदा बेटों के साथ सईद साहब बड़े फखर से रहते थे। मजाल थी कि सईद साहब के सामने कोई ऊंची आवाज से सांस भी लेता। तीनों बेटे वकार, मुनव्वर और अहमर अलग घरों में रहना चाहते थे, मगर बाप की सख्त तबीयत के बायस उन्हें खामोश रहना पड़ता। तीनों लड़कों ने चूंकि बचपन में सईद साहब से इस कदर जूते खाए थे कि उनकी गर्दन अपने बाप की जानिब उठती ही ना थी। फिर वो दिन आया जिस दिन तीनों बेटे सईद साहब की चारपाई के पास आजी से खड़े थे। सईद साहब बहुत बीमार थे, उन्होंने अपने बेटों को अपने पास खास मकसद से बुलाया था। तीनों बेटों में से किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार कब वो सईद साहब के कमरे में आए थे। सईद साहब के होते हुए उनकी गैर हाजिरी में उनका कमरा बंद ही रहता था। बिस्तरे मर्ग पर बाप को देखकर तीनों बेटे अफसुर्दगी से नजरें झुकाए खड़े थे। सईद साहब की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू अहमर ने किनारों से बहते हुए तिरछी नजर से देखे थे। उन्होंने अपने बेटों को पास बैठने को कहा तो तीनों में से कोई भी ना बैठ पाया था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों आंखों में एक दूसरे से पहले आप कह रहे हो। फिर वही हुआ जो होना था। गाड़ी निकल गई और सईद साहब न जाने जिंदगी के कितने राज और दर्द अपने साथ लिए दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे माहौल में रहने वाले बेटों में भी अपनी कैफियत और जज्बात को अंदर ही अंदर रखने की बीमारी जड़े पकड़ चुकी थी। तीनों ही अपने बच्चों से इंतहाई सख्ती से पेश आते थे, मगर बाप की मौत के बाद अहमर को अक्सर अपने बाप का आखिरी जुमला सताने लगा। वो अक्सर सोचता, क्यों हम में से कोई भी आखिरी वक्त में वालिद साहब के बिस्तर पर ना बैठ सका। वालिद साहब की आंखों से गिरने वाले आंसू मौत की तलखी के बाइस थे या उनकी वजह उनकी अधूरी तमन्ना थी जो अहमर के दिल में बाप की मौत के साथ पैदा हुई थी। अहमर का बेटा आफताब 10 साल का था। घर के माहौल के बाइस वो जान चुका था कि जैसे ही वालिद, चचा या दादाजी घर आए तो अपने कमरे में खामोशी से छुपकर बैठ जाना है। कुछ अरसे में तीनों भाइयों ने अपने घर अलग अलग कर लिए और सईद साहब की तरह घर के चीफ बन गए। मगर अहमर को अपने बाप की बेबसी सता रही थी। वो उनकी तरह मरना नहीं चाहता था, ऐसा शख्स जो मौत के वक्त भी अपनी औलाद का लम्स महसूस न कर सका। मुनव्वर और वकार अहमर की तरह नहीं सोचते थे। मुनव्वर ने जब अपने बेटे को फेल होने पर बुरी तरह पिटाई लगाई तो अहमर ने उसे रोकने की कोशिश की। अहमर को समझाते हुए मुनव्वर ने कहा, घोड़े को लगाम लगाकर नहीं रखेंगे तो काबू से निकल जाएगा। आफताब ने भी यह पिटाई देखी थी। अहमर आफताब की आंखों में खौफ महसूस कर सकता था। इस वाके के कुछ ही हफ्ते बाद अहमर नए घर में चला गया। वो अक्सर बच्चों से मुतल्लिक पढ़ता रहता था। वो समझ चुका था कि लगाम घोड़े को लगाई जाती है, एक इंसान तो मोहब्बत का भूखा होता है। उसने सोचा वो अलग घर में अपने बच्चों को खुशगवार माहौल देकर उनकी आंखों में बसे खौफ को दूर कर देगा। मगर घर बदलने से इंसान अपनी जात को तब्दील नहीं कर सकता। जाहिर को बदलना बातिल को बदलने से कहीं ज्यादा आसान होता है। अहमर ने अपने बच्चों से सख्ती करना बहुत कम कर दिया। वो अक्सर सोचता था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों से करे। उसके अंदर शदीद ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि वो अपने बेटे आफताब को बताए कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे बुलाता, उससे स्कूल से मुतल्लिक पूछता तो बच्चा खड़े खड़े जवाब देता और वापसी के लिए मुतमन्नी नजरों से देखने लगता। 10 साल आफताब ने अपने बाप को यही करते देखा था। सईद साहब की मौत भी उनके असर को खत्म ना कर सकी थी। घर का माहौल वैसा ही था जैसा उन्होंने बनाया था। वक्त गुजर रहा था
मगर अहमर की तमन्ना थी कि हसरत की तरह उसके वजूद को मुट्ठी में लिए थी। वो अपने बेटे से गले लगना चाहता था। अहमर को याद था वालिद से जिस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ती तो उसकी माँ बहुत प्यार से गले लगाकर अहमर से कहती, बेटा मार तो गलती करने पर पड़ेगी ही, वैसे सईद साहब तुमसे प्यार बहुत करते हैं। वो दिल ही दिल में कहता, प्यार? उन्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। मोहब्बत और खौफ एक जगह नहीं रह सकते। किसी इंसान से या तो खौफ महसूस किया जा सकता है या फिर मोहब्बत। ये जानने के बावजूद वो आफ्ताब की आंखों में नजर आने वाले अपने लिए खौफ को खत्म नहीं कर सका था। अहमर कभी अपने बाप से प्यार महसूस नहीं कर सका था, लेकिन उनकी मौत पर आंसुओं की वजह वह समझ नहीं पाया था। वो उसकी शख्सियत पर गहरे असरात रखते थे। वो कब बड़ा होकर उन जैसा हो गया पता ही ना चला। अहमर ने आफ्ताब पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर उसकी बेटी आलिया और आफ्ताब उसके ऑफिस से आते ही कमरे में छुप जाते। उनकी आवाज धीमी हो जाती। अगर किसी वजह से वो उन्हें अपने पास बुलाता तो वो अक्सर बिस्तर के पास खड़े खड़े उसकी बात सुनते। पहले तो उसे इन बातों का एहसास न था, मगर बाप की मौत और उस आखिरी मंजर ने अहमर को बेचैन कर दिया था। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं था जिससे वो अपनी दिली कैफियत बयान करता। उसने काफी दिन तक सोचने के बाद बच्चों को छुट्टियों पर मरी ले जाने का सोचा, जहां वो उनके साथ एक ही कमरे में रहे और उनसे इजहार मोहब्बत कर सके। मगर वो मरी में ले जाने के बावजूद अपने और बच्चों के दरमियान खौफ की दीवार को कम ना कर सका। जिस कदर हिचकिचाहट बच्चे महसूस करते थे, वो उनसे भी ज्यादा ऐसी ही हिचकिचाहट का शिकार था। आखिरकार उसने एक डायरी में खलील जिब्रान की एक नज़म के बाद खतूत लिखने शुरू किए। नज़म कुछ यूं थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो जिंदगी की खुद तमन्नाई के बेटे हैं और बेटियां हैं। वो तुम्हारे जरिए आए लेकिन तुम में से नहीं, और अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुमसे ताल्लुक नहीं रखते। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दो लेकिन ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके पास अपने ख्यालात हैं। तुम उनके जिस्मों को घर दो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें आइंदा के घरों में मकीन हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, अपने ख्वाबों में भी नहीं। तुम उन जैसा बनने की जिद्दोजहद करो, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करो, क्योंकि जिंदगी ना पीछे को जाती है ना गुज़िश्ता कल में अटकी हुई है। तुम वो कमान हो जिससे तुम्हारे बच्चे जिंदा तीरों की तरह आगे को फेंके गए हैं। कमानदार लामतनायत की राह पर निशान ढूंढता है, और वो खुदा अपनी ताकत से तुम्हें झुकाता है ताकि उसके तीर तेजी से और ज्यादा दूर जाएं। मैंने जब से ये नज़म समझी है, मैं जान चुका हूं कि बच्चे कोई जानवर नहीं कि उन्हें हम अपनी मर्जी से हांके। उन्हें खौफ से हम सर्कस के लिए तो तैयार कर सकते हैं, मगर जिंदगी के सफर को खुशगवार बनाना खौफ से मुमकिन नहीं। मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए खौफ नहीं, मोहब्बत देखना चाहता हूं। मोहब्बत वो जज्बा है जो एहतराम को जन्म देता है। वो तारीख लिखकर सबसे ऊपर लिखता मेरे बच्चों के लिए, जो दुनिया की बेश कीमत नेमत है। फिर वो अपने मोहब्बत का दिल खोल कर इजहार करता, उन्हें बताता कि वो उनकी किस किस हरकत को सबसे ज्यादा पसंद करता है। आफ्ताब 17 साल का हो चुका था जबकि आलिया 14 साल की थी कि अहमर का कार एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में था। आफ्ताब जब कॉलेज से आया तो उसे अम्मी ने बताया कि कुछ देर पहले ही फोन आया था। वो जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि चचा का फोन आया। उन्होंने आफ्ताब को अहमर का मेडिकल कार्ड लाने को कहा, जो बिल की अदायगी में मदद के लिए अहमर को उसके ऑफिस वालों ने दिया था। आफ्ताब ने अम्मी से पूछा तो वो कमरे में ढूंढने लगी। आफ्ताब और आलिया भी मेडिकल कार्ड को ढूंढने लगे तो आफ्ताब को बेड के नीचे के तराज में एक खूबसूरत सा डब्बा नजर आया जो चॉकलेट का था। उसने हैरत से उसे खोला तो उसमें उसे एक डायरी नजर आई। डायरी में लिखा था मेरे बच्चों के नाम। उसे तजस्सुस महसूस हुआ कि पापा ने इसमें क्या लिखा है। यह डायरी खतूत का एक मजमुआ थी। आफ्ताब खत पढ़ता जाता
और रोता जाता। अम्मी और आलिया उसके पास आईं, उन्होंने भी डायरी में लिखे खत देखे तो हैरत से देखते ही रह गए। वो शख्स जो इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद नजर आता था, रिश्तों में मोहब्बत का किस कदर मुतमन्नी था, वो आज समझ पाए थे। एक एक खत एक बाप की लामतनाई मोहब्बत का समंदर था, जिसमें उसने उन लम्हों को कैद करने की कोशिश की थी जिनको वो हकीकत में ना जी पाया था। उसने एक खत में लिखा, मेरे बेटे आफताब, तुम्हें क्या मालूम कि जब तुम अपनी कामयाबी का दबे लफ्जों में मुझे बताने की कोशिश करते हो तो मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर कहूं, तुम ही मेरा फख्र हो। आफताब अपने आंसुओं को साफ भी ना कर पाया था कि उसके चचा का फोन आया। आफताब बेटा, तुम आ क्यों नहीं रहे? हमें हॉस्पिटल की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करना है। उसने रोते हुए कहा, जी चाचा जान, आ रहा हूं। वो खतों में से पहला खत पढ़ने लगा, जहां खलील जिब्रान की नज़म के बाद कुछ बातें और फिर पहला खत लिखा गया था जो कुछ साल पहले का था। वो पढ़ने लगा, जिसका उनवां कुछ यूं था, मेरे बच्चों के नाम जो दुनिया की बेश कीमत नेमत है। फिर रोते हुए आफताब ने यूं पढ़ा, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। बाप कभी भी मां से कम प्यार नहीं करता, मगर वो मर्दाना खोल को तोड़ नहीं पाता। कुछ तोड़ भी लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह पेश आऊं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं सईद साहब की तरह अहमर साहब ही बना रहा। मेरा जी चाहता था कि मैं जब ऑफिस से आऊं तो मेरे बच्चे भागकर मुझसे लिपट जाएं। वो लम्हा मेरे लिए कयामत से कम नहीं होता था जब तुम लोग छुपकर कमरे में बैठ जाते थे। मैं जो कह नहीं पाया वो लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से लबालब भर चुका है। अगर अब इजहार नहीं किया तो शायद फट जाएगा, इसलिए कागजों का सहारा ले रहा हूं। मैं अपने बाप की तरह अधूरी तमन्ना लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, इसलिए मेरी तमन्ना है कि तुम खुद ही ये खत देख लो और मुझसे लिपट के कह दो कि मेरी मोहब्बत को महसूस करते हो। मेरी बेटी, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। तुम जो मुझे देखकर हंसना रुक जाती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर मैं कह नहीं पाता। मेरे जज्बात तो कैद है, मगर तुम लोगों के क्यों कैद हो गए? मेरे बच्चों, रब तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी ना छोड़े। आफताब और आलिया हसरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में हमने क्यों मोहब्बत में पहल नहीं की? पापा तो हमेशा शफकत से ही पेश आते थे। आलिया ने अफसरदगी से कहा, शायद हमारे जहन भी दादा जान के खौफ में जकड़े हुए थे। सोचो, हम पर इस कदर असर है तो फिर पापा पर दादा जान का किस हद तक असर होगा? आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं तो जाते ही पापा से लिपट जाऊंगा। आफताब और आलिया हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके चचा और ताया उनके मुंतजर थे। आफताब ने कार्ड ताया जान को दिया और खुद उस वार्ड की तरफ चल पड़ा जहां अहमर को रखा गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पापा से लिपट कर कहेगा वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। आलिया का भी यही हाल था कि डॉक्टर ने उन्हें रोक दिया। आफताब ने कहा, मैं मरीज का बेटा हूं, मुझे अंदर जाने दीजिए। चचा ने आफताब से कहा, अहमर को जब हॉस्पिटल लाया गया तो 15 मिनट के बाद ही वो हम सबको छोड़ गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताएं बेटा। आफताब ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। आलिया का भी बुरा हाल था। आफताब रोते हुए सिर्फ यही कह रहा था, मेरे अल्लाह, मेरे पापा की तमन्ना भी अधूरी रह गई।

0: कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हम जाने अनजाने में अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में हमसे डर जाते हैं और अपने ख्यालात, एहसासात, यहाँ तक कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का इजहार करने से डरते हैं, और ये डर हमारे बीच बहुत दूरी डाल देता है। बच्चों को प्यार से सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार अपने वालिदैन से खुलकर कर सके।
1: बोरियत को भगा दो।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। जिंदगी के मामलात किसी भी किस्म के हों, जैसा कि राइड बुकिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसन, चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, शॉपिंग, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, इंटरनेट की शमूलियत हर शोबे में लाजमी है। मगर कुछ सालों से IT की फील्ड में एक नई टर्म का जिक्र बहुत बढ़ चुका है। न सिर्फ जिक्र बढ़ चुका है बल्कि इंडस्ट्री और रिसर्च में इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, और वो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज हम रोशनी डालेंगे इस टर्म के टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है सर आबिद बशीर, जो कि UCP FOIT SE डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं और वायरलेस नेटवर्क्स एंड रेडियो सिस्टम्स की फील्ड में रिसर्च का तजर्बा रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि असल में ये है क्या और ये किस तरह दुनिया को बदल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
3: जी आपका शुक्रिया, आपने मदद किया।
2: चलिए सर, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि IoT, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, असल में ये है क्या?
3: जी बुनियादी तौर पे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ज़माने में हम जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कंडक्ट करते थे, तो उसके हवाले से हमारे पास कुछ मोबाइल डिवाइसेज होती हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो जब भी आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होना ज़रूरी है। चाहे इट कुड बी अ मोबाइल, वो हो सकता है मोबाइल हो, वो आपके पास लैपटॉप हो, वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। अभी कुछ अरसे से आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि होम ऑटोमेशन के हवाले से, लाइक मैं अगर घर पर नहीं हूँ तो मैं अपने CCTV कैमरा को देखना चाहता हूँ। तो जो कैमरा एक ऐसी एंटिटी है जो कि इंटरनेट डिवाइस, वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है सॉरी, लेकिन वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इंटरनेट पे कनेक्ट है।
2: जी।
3: इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं घर में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी होम सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहता हूँ, लाइक मेरी डोर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, मेरा जो एयर कंडीशन का सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो मैं अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं और अपने मोबाइल के ज़रिए अपना किसी भी अपनी होम अप्लायंस को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, या किसी भी एंटिटी ऑफ माय होम को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा हूं या मैनेज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए उस डिवाइस, उस होम एंटिटी का या अप्लायंस का इंटरनेट पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी एंटिटीज़ बन जाती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कंप्यूटिंग डिवाइस ना होने के बावजूद कनेक्टेड हैं। दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो उनको हम थिंग्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो रेफर करते हैं, और ये एक मिला के एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
2: सर, क्या ये कहना सही है कि IoT नेटवर्क में हर डिवाइस एक कंप्यूटर का रोल अदा कर रही होती है?
3: बेसिकली हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अलावा इनको कंप्यूटर का रोल अदा करने वाली डिवाइस तो नहीं कह सकते
2: जी।
3: लेकिन जब वो मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई भी डिवाइस, लाइक मेरा सेपरेट यूनिट है, इन्वर्टर है, मेरी फ्रिज है, मेरा माइक्रोवेव है, मेरी डोर है, या मेरी अलार्म क्लॉक है, या मेरा CCTV कैमरा है, ये कंप्यूटिंग डिवाइस का रोल अदा नहीं कर रही, मगर ये एक ऐसी एंटिटी के तौर पर बिहेव कर रही है जो इंटरनेट पर कनेक्ट हो गई है
2: जी।
3: और जब वो इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम उसको किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं।
2: Exactly.
3: जब वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं, तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और थिंग्स से मुराद अदर देन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस हैं जो हमारी होम अप्लायंसेस भी हैं, या होम यूजेज के अंदर, या हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं वो यूज हो रही हैं।
2: सर, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना डिवाइस का जरूरी है, तो सर क्या हम किसी ऐसी डिवाइस को भी IoT नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड ना हो?
3: نہیں, اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ, دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
2: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
3: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ جا رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں, میں نے رائڈ کروائی ہے, میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے,
2: جی,
3: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اس کو آف کرنا, ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیویٹی ہونا دیٹ از ویری اسینشل.
2: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
3: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں, نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں,
2: جی,
3: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ہوم آٹومیشن کی طرف, اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ, تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
2: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं. इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर. जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली. तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट. और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाय द इररिलेवेंट यूज ऑफ सर्विस. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस. तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं. और डिनायल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है. एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाई कर दिया जाए. इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से. और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनायल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनायल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है. तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें. वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम
2: नेटवर्क जैसे जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे. तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है. तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ, तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है. तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है.
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है.
1: जी.
2: लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं. 6G, 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च कंडक्ट कर रही है. तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है. तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले कम अज़ कम 5 to 10 years जो हैं वो IoT में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होने के चांसेस हैं. और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है. जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है. और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज भी नए हैं. तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका यूजेज भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो एक नया एनवायरनमेंट बनने के बहुत चांसेस हैं और नई एडवांसमेंट्स आपके सामने आने के चांसेस हैं। और फिर नई एप्लीकेशंस बिजनेस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी या बनाने का सोचेंगी या सोच रही होंगी डेफिनेटली, जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने ला के रखते हैं।
1: हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: जी, मेरे लिए ऑनर की बात थी।
1: सर, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी। उम्मीद है लिसनर्स को भी IoT के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: कर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी के दुनिया, और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सुमेर सही अपने सभी सुनने वालों को, अपने सभी चाहने वालों को और अपनी प्यारे से सामीन को तहे दिल से करती हूँ जनाब खुश आमदेद। जी आयानु, इस शो में हम बात करते हैं मौसीकी की, हम सुनते हैं मौसीकी, हम सुनते हैं ऐसी मौसीकी जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखने के लिए होती हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम आपकी यादों को थोड़ा सा, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी यादों को थोड़ा रोशन करते हैं, एक नई बुनियाद देते हैं, एक तसलसल बनाते हैं, ताकि आप सुन सकें ऐसी मौसीकी और आपको पता चले कि हाँ ये भी है। क्योंकि बाज़ुकात जैसे कि ज़माने आगे बढ़ते जाते हैं और ज़माने की तेज़ रफ्तारी के साथ हम अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ों को पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में ना ही मैली होती हैं ना ही उन पे गर्द आती है, वो हमेशा पहले दिन की तरह सुरखरू रहती हैं।

बोल के लब आजाद है तेरे, जो बिल्कुल जना हम सभी के लब आजाद है। हम कह सकते हैं जो हमारे दिल में है, हम बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लबों को सिया नहीं गया, हमारे लबों पे ताले नहीं पड़े। यही तो बात थी फैज़ अहमद फैज़ की, उनमें यह खासियत थी कि उनकी शायरी एक वलवला जोश व खरोश लाती है, एंथुजियाज़म जिसे आप कहते हो एंथुजियाज़म, वो डिवेलप होता है। आप चाहते हो कि हाँ बस कुछ कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि बस जो दिल में है वो कर जाओ। अच्छा मुझे आप बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोलना चाहा और आप बोल ना पाए? कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोल लिया लेकिन आपको सुना ना गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके बोलने को यू कह लीजिए जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी और आपको कहा गया कि नहीं तुम तो रहने ही दो? होता है ना? हाँ अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। और पता है क्या, ये जो बार बार हमें इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि नहीं यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये कर सको, तुम ये कह सको, तो पता है वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जिसे हमने कहीं सुला दिया होता है। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वाहट होती है उसमें, और यही तो सच्चाई का शेवा है, यही तो है सच्चाई का हुस्न जनाब। इसलिए डरे मत, कह दीजिए जो दिल में है, कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। अरे बोलिए, सब सुनेंगे, अगर नहीं सुनते तो अपनी बात में, अपने कहने में वो कुव्वत लाओ, वो चीज़ लाओ कि सब कह उठें कि अरे क्या कमाल की बात की है, अरे वाह भाई वाह, बात करनी हो तो ऐसे करनी हो। जैसे ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी से बात करना चाहें तो हम उसकी तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो हमारी तरफ माइल हो जाए, हमें सुनने लग पड़े। जैसे कि आप यूँ कह लीजिए कि आप एक महफिल में बैठे हैं। अच्छा चले एक और बात भी कर देती हूँ मैं आपसे। इश्फाक अहमद साहब कहते हैं कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और आपको एक बात याद आ गई हो और वो अचानक से आपको कोई बात याद आई और आपने कहा है कि इस इंसान ने फलां वक्त में फलां बात कही थी। अच्छा अब पता है मसला क्या है? अब मसला ये है कि वो जो इंसान बैठा हुआ है उसने जो बात कही थी ना, वो इस तरह की बात है कि अगर आप उस महफिल में वो बात कह दोगे तो पहली बात उसकी दिलाजारी होगी और दूसरी बात उसकी इज्जत उस महफिल में घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो पता है क्या करें? आपको पता है? चले मैं जानती हूँ कि आपको पता है, लेकिन फिर भी बताती चलो। इश्फाक अहमद साहब ने कहा कि तब अपनी उस दलील को, तब अपनी उस बात को रोक लो और उस इंसान को बचा लो। अरे देखा, कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, यहाँ बातों से बात निकल आई ना, यानी किसी इंसान की इज्जत करना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हम जितनी इज्जत दूसरों को देंगे और जितनी दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे, जितना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे उतना ही हमारे हिस्से में वही चीज़ें आएंगी। कहते हैं ना, जो चीज़ें दोगे वही वापस आएंगी, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो हकारत हो। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी अगली गज़ल सुनते हैं और इसके बाद वापस आके आपसे
बहुत सी मजीद बातें करते हैं, ठीक है? हमारे साथ रहेगा।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। जी बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ की हम ये खूबसूरत नज़्म सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिलों को ये छू सी गई होगी, आपके तारों को, यानी आपके दिलों के तारों को, आपके दिलों के सुरों को ये बजा सी गई होगी। जी जनाब, यही तो बात है इसकी। अरे, मरहम बन के आती है, ये कैसी दुनिया है, जादू की दुनिया, ले जाती है हमें कहाँ से कहाँ, पता ही नहीं चलता। अच्छा चलो एक बात करते हैं, मैं आप पर कुछ बताती हूँ। कहते हैं एहसास एक दौलत है, एहसास क्या है? क्या एहसास करना सिर्फ महसूस करने का नाम है? क्या एहसास जो है वो हसास तबीयत का नाम है, हसासियत का नाम है? क्या है ये हसास होना, ये एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं, बताइए ना। चलिए मैं मुश्किल आसान किए देती हूँ। ये जो एहसास होता है ना, ये एक ऐसी दौलत है जो गैरों को अपना कर देती है। ये जो एहसास है ना, पता है ये क्या है? ये वो है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। एहसास, अरे पता है एहसास क्या है? एहसास वो है जिससे हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। एहसास वो है जब हम किसी को जानते भी नहीं होते, लेकिन हम उसकी मदद कर देते हैं। ये सब एहसास ही तो है। और अगर एहसास हो ना, तो बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मोहब्बतें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, लोग अपने हो जाते हैं, अपने दिल के बहुत करीब। हमारा दिल जो है ना, एहसास का शुक्रगुजार है, या आप यूँ कह लीजिए दिल का सबसे हसीन साथी एहसास होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। हम सभी कहते हैं कि लाहौरी जो होते हैं, यानी जो लाहौर में रहने वाले होते हैं, वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो हम लाहौरियों की यही तो बात है जनाब, कि हम बड़े दिल वाले होते हैं। इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि हम इस छोटे से दिल में, जिसको हम बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और हाँ, अगर आप उदास बैठे हैं कमरे के किसी कोने में, आप मुझे सुन रहे हैं, या किसी भी जरिए से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर किसी ने आपके एहसास की कदर नहीं की, तो दिल मत हारिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बहुत हसीन है, बहुत खुशगवार है, इसमें रानाइयाँ हैं। अरे क्या बात करते हैं, आप यूँ कह लीजिए कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जैसे हम कभी कभार जो है वो ज़िंदगी का बस एक फेस देख रहे होते हैं, एक लिंक देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हर बात में, जैसे मैंने कहा था कि बात होती है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि बात की अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अच्छा, बात तो मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है, अब इसको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम ग़ुलाम अली को सुन लेते हैं, और उनकी आवाज़ में ऐसी गज़ल
जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सुनिए और लुत्फंदोज होइए। पहली बार राजीना अखियाँ ने तकिया, एह जया तकिया कि हाय मार सुटिया।

पे मर गया कैसे। अरे बेहती हसन की आवाज हो और ऐसे अल्फाज हो तो कहने को तो बनता है कि क्या ही बात है, कमाल है, लाजवाब है, बाकमाल है। तो जना बाकमाल की बात आई है तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो हमारे साथ हैं, जिनकी समातों से हमारी आवाज टकरा रही है, तो मैं कहती चलूं कि आप बाकमाल हैं। पता है, जानती हूँ पता है, लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि कुछ बात आपके जहन में बस अटक जाए और आप वो सब करना शुरू कर दो। आप बाकमाल हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत चंचल है, गुस्सा तो आपके पास भी नहीं भटकता, अगर आता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो। उसके अलावा आपकी जुबान बेहद मीठी है, इतनी मीठी कि ये किसी का दिल नहीं दुखाती। और पता है, ये जो दिल है ना, बहुत नर्म है, ये दिल किसी का दिल नहीं दुखाता। तो आप हुए बाकमाल। तो जनाब, हम अपने प्रोग्राम में तैयारी गल्फ में गजलें भी सुनते हैं और साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी करते जाते हैं। तो आज जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, लाइक हम बात कर रहे थे एहसास की, हम बात कर रहे थे खुशी की, हम बात कर रहे थे कामयाबी की। अब एहसास, एक बात मैं अक्सर कहती हूँ, इश्फाक अहमद साहब ने कहा था कि हमें फातिहा लोगों के मरने पे नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें तो फातिहा एहसास के मर जाने पे पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका जो किरदार होता है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब एहसास मरते हैं तब इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तब आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर एक इंसान को तकलीफ़ है, वो सड़क पे पड़ा बिलबिला रहा है, वो दर्द से कराह रहा है, वो चीख रहा है कि मेरी मदद करो, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, अरे वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हम नहीं देखते, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये एहसास ही तो है, ये एहसास की तो दौलत है, ये एहसास ही तो है कि हमें खुशी होती है। अगर हम बिल्कुल बेहस हो जाएं तो हमें खुशी का एहसास कैसे हो? अच्छा, जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम खुश होते हैं, और खुश कैसे होते हैं? खुश भी तो एहसास होने से आता है ना। चले, कहते हैं कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो भाई उसके लिए ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन पता है क्या, मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी के बारे में सोचने लग पड़ो, एक कामयाब इंसान की तरह सोचो और सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं गिरा, अगर मैं मुझे ठोकर लग गई, मुझे कोई संभालने वाला ना आया, तो अपना हौसला मैं खुद हूँ, अपनी ताकत मैं खुद हूँ, अपनी कामयाबी मैं खुद हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औकात लोग तब नहीं आते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, लोग तब आते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। यानी आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब संभल जाओगे ना, जब वो चीज़ कर लोगे, जब वो चीज़ पा लोगे, तो बहुत सारे हाथ आ जाएंगे, बहुत सारे सहारे आ जाएंगे। वो ये पूछेंगे कि हाँ तुमने कर लिया, अरे वाह तुमने तो कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे किया, इस दौरान तुमने कितनी तकलीफें सही। तो इसलिए कामयाब होए, खुश रहें। और पता है हकीकी खुशी क्या होती है? हकीकी खुशी तब मिलती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो, जब आप दूसरों को खुश करो, जब आपकी वजह से आपके माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, जब आपकी वजह से कोई अनजाना हंस पड़े। खुशी के लिए कोशिश करनी पड़ती है या नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कहते हैं कि नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ सुन लेते हैं।

कदमों में तेरे जीना मरना, नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फिल जनाब, आज भी ऐसा हुआ कि वक्त तेजी से गुजरता गया और हम उसको कैद नहीं कर पाए। अरे ये कैद हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ लम्हों को संभालने की कोशिश जरूर करते हैं। तो जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहें, खुश रहें। और एक बात जो मैं कहती जाऊं कि कामयाबी जब मिलती है तो तब खुशी जरूर होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में ही आपने कामयाबी ढूंढ ली हो? अजीब बात कर दी मैंने, तो बताई जाती हूँ। जरा सोचे कि किसी के लबों पे आपने मुस्कुराहट फैला दी, किसी को रोते रोते हंसा दिया, तो कामयाबी हुई ना। इसी तरह कामयाबियां समेटते रहे, अपने से दूसरों को बेहद खुश रखिए, खुशियां बांटते रहे, क्योंकि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ, जब आप हम सभी खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। और एक बात और, अपने लबों पे चंद लम्हों की मुस्कुराहट लाने के लिए किसी की मुस्कुराहट मत छीनिए, चाहे वो बहुत छोटी सी कीमत अदा करनी पड़े आपको उसको मुस्कुराहट की। उस मुस्कुराहट की छोटी सी भी कीमत आप अदा करनी पड़ जाए आपको, तब भी वो मत छीनिए किसी से, किसी की खुशी मत छीनिए। और खुशियाँ बांटते रहे, खुश रहें, खुश रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। त्यारे गज़ल को सुनते रहेगा, आप सुन रहे थे त्यारे गज़ल, मेज़बान सुमेर सगीर के साथ। अल्लाह हाफिज़।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।